तपो नास्ति न संतोष परम सुखम न तृष्टया तपो व्याधि न तृष्टया तपो व्याधि न च धर्मा